0: अब हो सैखा सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सैर बाणी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन माने परतख गुरु नस्तारे। धुर की बाणी आई तैन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना। मेरे साहब दे पावन पवित्र सोहने चरणा कमलों की हाजरी भर रही, सतगुरां जी की साजी नवाजी अति सत्कारयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, आओ सब तो पहला फतेह की सांझ प्राप्त कर लईए। कोई भी रसना बांझी ना रहे, गुरु के द्वारे ते आए हाँ। जिवें कई वारी विद्यार्थी क्लास में बैठा ही गैर हाजिर हो जाता है, ते असी मेरे मालक दे चरणा कमलों में हाजरी लगा लिए, क्योंकि फतेह साड़ी हाजरी है, फतेह जित का प्रतीक है, फतेह सिमरन है। फतेह अकाल पुरख निरंकार सच्चे पातशाह ने बड़िया वड्डिया कुरबानिया तो बाद साड़ी झोली दे विच पाई है। तेगां ते नचना आउंदा ए सूली चढ़ ढोले गाउंदे हां, जय हिंद का नारा साडा नहीं, असी गज के फतेह बुलाउंदे हां। प्यार ते सत्कार दे नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला महापुरखां दे जन्म दिन दियां संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी, उन्हां दा अज जन्म दिन भी है। ते महाराज कहिंदे वी जन्म मरन दोहों मैं नाही, जन पर पकारी आए। असी खुशी दे रूप विच कह सकते हां, बधाइयां दे सकते हां महापुरखां दे जन्मदिन दियां लख लख बधाइयां होण। जिहड़े अकाल पुरख दे भेजे होए आउंदे आ ते उह तां सदा ही आ दुनिया दे उत्ते, एक जमना ते मरना दो चीजां दुनिया ते। बंदे दा जिहड़ा नाम आ ना, आम बंदे दा नाम अपने अरगियां दा दूजी तीजी पीढ़ी तक जाके भुल जांदा। कोठियां दे विचों फोटो भी लै जांदे ने जदों तीजी की पीढ़ी चल पवे चौथे, क्योंकि चेता नहीं रहिंदा। अज दे समें दे विच मसां दादे दा नां जां पड़दादे दा बरलियां बरलियां नूं चेते हुंदा। इह आउण जाण दा मेला है दुनिया, क्योंकि इस दुनिया ते नां उहनां दा रहिंदा जिहड़े रब दे नाम नाल जुड़ जाण, जिहड़े परमेश्वर दे नाम नाल जुड़े होण, जिहड़े बंदगी दे नाल जुड़े होण, जिहड़े परपकारां नाल जुड़े होण, जिहड़े गुणां नाल जुड़े होण। ना सांझ की जहै गुणा केरी छोड़ आवगणा चली है, वो शरीर करके भावें चले जाण पर वो पावना करके, वो परपकारां करके, उच ग्याइयां करके दुनिया ते सदा ही अमर हो जांदे, सदा ही। अकाल पुरख अंतर जामी साहब सचे पातशाह जी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी गोद च बैठ के गुरबाणी दा कथा दा आनंद माण रहे सी। कथा कीर्तन सुखदाई सुन हर कथा तारी मैल, ये जेडे बचन ने ना गुरु दे शब्द आ जेडे, ये सानू ते तुहानू महाराज ने एक ड्यूटी लाती है, किसी की सुना दी है, किसी की सुन दी है, पर ये गुरु दे बोल है। हो आपो बोलना जानदा मैं कहया सब हकमाओ जियो। एक तो होंदियां अपनियां आम गल्लां, आम अपनियां घर दियां दुनियावी गल्लां, आम दुनिया दियां गल्लां, ते जिहड़ियां गल्लां गुरु दियां है उन्हां नूं असीं आम नहीं कह सकते, क्योंकि वह सहबत सलाह परमात्मा की, वह बंदगी है साडी। गुरु की वड्याई साडी बंदगी है, ते जिनी वड्याई कर लगे उन्नी थोड़ी है। जहबा एक कवन गुण कही है, बेसमार बेअंत स्वामी तेरों अंत ना कहन ही लही है। एक जीभा वाला इंसान किनिया कवड़ियां कर सकता रब दियां। कहिंदे अनेक जीभा वालियां तो, अनेक नाम रखण वालियां तो, ते अनेक बंदगी भगती वालियां तो भी रब की वड्याई नहीं हो सकी। उन्होंने कहा महाराज असी तुहाडी वड्याई करन दे योग ही नहीं। जिन्हां ने वड्याईयां कीतियां, जिन्हां ने बंदगियां कीतियां, उन्होंने कहा सच्चे पातशाह असी तां शेर दे विचों हले पूणी भी नहीं कत्ती। मेरे मालका गरीब नवाज कृपा करो साडे ते, आ सड़दे बलदे संसार तो उतार लियो, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबरे तेते लिहो अवार। आओ महापुरखां दे जन्म दी गल कर दईए। बिरले बिरले नगर हुंदे जिन्हां नगरां दा नां किसे योधे सूरमे करके रह जांदा। ते आपां आम जदों संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले कहिंदे आ, ते इत्थे भिंडरां वाले कहण दे नाल सानूं इह वी सोझी आउंदी समात आउंदी है वी जिन्हां ने भिंडरां दा नां पूरी दुनिया विच चमका दित्ता ना, ते उह सूरमे दा जन्म रोडी पिंड दे विच होया। रोडी पिंड विच जन्मिया एक योधा बड़ी महान। पिता जगिंदर सिंह दे घर होईयां रशनाईयां, माता जी नूं आण के लोक देन बधाईयां, परियां मंगलां गाउंदियां ते शब्द गावण आईयां। मेरे सतगुरां दे अकाल पुरख दे प्यारे दे आउण ते धरती भी पवित्र हो गई रोडे पिंड दी, अते आसा पासा जिहड़ा वातावरण है उहदा माहौल बदल गया। उह मां धन है जिहड़ी मां ने संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां नूं जन्म दित्ता अपनी कुख दे विचों। मावां भावें होवन परियां, नाल हुसन दे गज गज भरियां, चंगी घरी ब्याहियां बरियां, पहिनण पट हड़ावण जरियां, पर पूरा कदे शिगार ना होवे जे गल लालां दा
1: हार ना होवे।
0: विद्वान कहिंदा है वी औरत भावें राणी पटराणी महाराणी होवे, औरत भावें झुग्गियां च रहिंदी होवे ते भावें महिलां दे विच, जिन्ना चिर उहदी कुख नहीं सलखणी हुंदी ना ते उह अपने आप नूं इस धरती ते आई इक बोझ समझदी है, मिट्टी दी ढेरी समझदी है, लोकां दे ताने सुनने पैंदे है। जिवें राणी मैणी घरे बड़ियां धन दौलतां ने, बड़े नौकर चाकर है, फतेह चंद मैणी दी राणी। ते जिवें गुरु गोबिंद सिंह गोबिंद राय महाराज सच्चे पातशाह अकाल पुरख नूं बेनतियां कीतियां सी, इन्होंने पंडित शिव दत्त ने कहा सी राणी मैणी भी जे चाहुणी आ भी तेरी गोद विच पुत खेडे, तेनू कोई मां कवे, फिर गोबिंद राय साहब नूं त्या, उह तेरियां मुरादां पूरियां कर सकदा है। उह कहिंदी पंडित जी तुसीं एडे वड्डे विद्वान, इन्ने तुसीं ग्रंथ पढ़े ने, इन्ने लोक तुहाडा सत्कार करदे है, इन्ने लोक तुहाडे कोले आउंदे ने आपदा भविख पुछण वास्ते, ते एडी वड्डी तुहाडी उमर, ते दुनिया विच जाने पछाणे मन्ने परमन्ने तुसीं, ते उन्हां विचों लखां चेलियां दे विचों पाशकां विचों मैं वी तुहाडी पाशक हां, ते तुसीं गुजरी दे लाल दी गल कर रहे हो, जिन्हां जिहदियां गिआं मैं बुझारतां शरारतां सुणियां, जिहड़ा गलेले मार के घड़े भन्नदा ते गागरां विच तीर लगा दिंदा है, जिहड़ा टोलियां बना के दो पास्यों लड़ाइयां युद्ध करवाउंदा बचपन दे विच, तुसीं उहदी गल कर रहे हो वी उह रब्बा। राणी मैणी नूं इह पंडित कहिंदा मैणी राणी साहिबा पहिलां मेरे भी अखां मूहरे ही पड़दा सी, उमरां नाल बंदा वड्डा नहीं बणदा, उमरां नाल नहीं वड्डा बणदा बंदा, गुरू दी दित्ती होई मत नाल, गुरू दी दित्ती होई पावर नाल बंदा वड्डा। उमर तां किसे दी छोटी किसे दी वड्डी चली जाणा है काम उमरां दा, क्योंकि उमरां करके नहीं गुणा करके, सांझ की जाहे गुणा केरी छोड़ा बगण चली है, जिहदे कोले गौण ने उह वड्डा। ते कहिंदे उह दाता, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਏ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਏ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਧਿਆ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੁੱਲੀ ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁੱਲੀ ਚ ਵੀ ਗਏ, ਹੇਮੇ ਦੀ ਛਪਰੀ ਚ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਰਾਣੀ ਬੈਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਵੀ ਗਏ। ਗੱਲ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਨੀ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਨੀ, ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਬੁੱਕਲ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਿਆ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਗਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਥਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਕ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਓ ਇਹ ਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਧਰੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਏ। ਧਰੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਰੱਬ ਆ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੈਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਬਤਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜੱਗ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਦੇ ਮਗਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਪੁੱਤਰ ਪੁਨਾ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਫਿਰੇ ਦੁਨੀਆਂ, ਮਾਪੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਸੀਤਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸੋਹਣ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਰਿਸ਼ਨਾਈਆਂ ਇਹ ਇਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ।

0: अपने धर्म नु मन्ने दा कोई इतराज नहीं, अपने धर्म नु मन्ने दा कोई इतराज नहीं, ए सतगुरु दी निंदिया करनो ओदा बाज नहीं, ए सतगुरु दी निंदिया करनो ओदा बाज नहीं।
1: ओ सतगुरु दे सत्कार दा शब्द बड़ाता संता ने, सतगुरु दे सत्कार दा शब्द बड़ाता।

मैनू दियो इजाजत मैं जा उस नू रोकांगा, मैनू दियो इजाजत मैं जा उस नू रोकांगा, शांत महीना नाल ना मनिया गोली ठोकांगा, शांत महीने नाल ना मनिया गोली ठोकांगा।

नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए सो को टल गुरु सेविया एनस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए ताना वाहिगुरु जी तनासरी महला पंजवा औखी घड़ी ना देख दे अपना बिरद संभाले हाथ दे रखे अपने को सास सास प्रतपाले औखी घड़ी ना देख दे अपना बिरद संभाले

गावे को जापेद से दूर, गावे को विखे हादरा हदूर, कथना कथीना आवे तोट, काथ काथ कथी कोटी कोट कोट, दीदा दिले दी थक पाही, जुगा जुगंतर खाही खाही, हुक्मी हुक्म चलाही राहु, नानक विगसे विप्रवाहु, साचा साहिब साच नाई, पाख्या पाहु अपार, आखे है मंगे है दीह दीह, दाद करी दातार,

कवन सवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सरुति माह कवन जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जान रुतमा हो ना कोई जाकर ता

गावे इंद इदासन बैठे देवत्या दर नले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारी गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरी अठसठ तीर्थ नाले गावे जोद महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तहारी सी तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर कीते गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारी सोई सोई सदा सच साहिब।

है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, तंद है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमान्ये समस्ति निधान्ये, नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, परभंगी परमाथे समस्ति विभूते, कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे, नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेक्षी अपरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते, नमो नित नारायण क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहंग, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो संग स्नानंग, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचिदानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवा

परम रूप पुनीत मुहूर्त पूर्ण पुरखा पार सर्व विश्वरचियो स्वयं पव गण भंजन हार कालहीन कला संजुगत अकाल पुरख अधीश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपीस अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन याद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्व घंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जान ही जे रूप रंग अररेख परम वेद पुराण जा कह नीत पाखत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आव ही बहु चित मद पार छंद त्वे प्रसाद गुण गन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आबा अपहंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपह निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म।

जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवी त्वै प्रसाद सवैये सरावक सुध समूह सदान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रती बिन एक रती के मातिम तंग जरे जर संग अनुपो तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप भली बे दन्यावत शीस न जात बिचारे इते भय तो कहा भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फरै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गण नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सुधारे तीरथ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक वसिख वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान के पिख पवन आहार जति जत तार सवै सुब चार हजार क देख श्री भगवान भजे बन भूपत एक रती बन एक न लिख सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनह दुरजान दलेंगे भारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोरा रिन मरोर मवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार विचार है सार की तार पशैया तूर्त देश मिलिंद मवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गडान के तोड़न हार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सबको सरनायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सतर सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र नरादप जांतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक सुअंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पातु अंत फसे जम्फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है भगती नर

प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो वर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख है हमारी तारी है चुन चुन सत्र हमारी मारी है आप हास दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हु जो सदा हमारे पछा श्री से तुझु करिय हर अच्छा राख ले हो मुहे राखन हारी साहिब संत सहाय प्यारी दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दों ता गाव हो हरी केरा मन जनी वसाया।

बिनस जाए मैं मोर, राच रहे बनता बिनोद, कुसम रंग बिखसोर, नानक तेह शरणी परो।

बांधे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे न बुझ सो प्रभ सदहु संग लिख गणत ना छुटी है काची पीत ना सुध जिसे बुझाए नानका ते गुरमुख निर्मल बुद्ध लेख गणत न छुटी काची पीत न सुध जिसे बुझाए नानका ते गुरमुख निर्मल बुद्ध जुगो जुग अटल चावर शतर ताकत दे मालक लोक अते परलोक सवार देन वाले सतगुरु दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जिंदगी दे कुछ पल सफल कर रही गुरु निवाजी साध संगत जियो प्यार अदब सहत गुरफते प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटान कोट शुक्र है उस मालिक वाहिगुरु दा जिसने तरस करके जाण लई एक दिन होर दे दिता। तरस कीता संगत विच ले आंदा कईयां दा विचारियां दा अज दा दिन किसे हस्पताल च शुरू होया होएगा। कोई मां पुत दे कोई भैन दे भरा दे सराणे बैठा अरदासां करदा होएगा। मालका मेहर करी तंदरुस्ती बख्शी असीं वी तेरे दर ते आण के नतमस्तक हो सकीए। कोई बेचारा उजड़ पिया कितें कोर्ट कचहरी जाण दी तैयारी करदा होएगा। शुक्र है मालका तेरा तरस कीता रहमत कीती जिथे अज दा दिन जिउण वास्ते मिलिया संगत विच ले आंदा। जिथे तन करके बैठे हाँ कितें साडी मन करके भी हाजरी लग जाए। कन्ना नाल सुने हुए बोल किते साडे मन तक पहुंच जान। आओ लड़ीवार गुर शब्द विचार आरंभन तो पहला मन दी एकाग्रता लई एक वार समूह संगत प्रेम नाल हाजरी लवायो।

तुर कर्म पाया तुद जिन कौसी नाम हर कै लागे। आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आ भर पूरे। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर। जिन्नी नाम त्याया गए मसकत काल।

परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वड्या पागा वाले हो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जिया दे पावन पवित्र मुबारक चरना कमला पास बैठ के गुरबाणी पढ़ सुन के मनुखा जन्म दिया घड़िया नू सफल बना रहे हो। आप संगता पली पांत जानू हो जून 1984 दे विच वापरे सिख नशल कुशी कलूकारे दे दिन चल रहे हन। स्वाप संगतां दे चरना विच बेनती है जरूर बर जरूर नितनेम तो वखरियां होर कुछ बाणियां दे पाठ सतगुरु सचे पातशाह जी दे चरना विच अरदास करिए तिना शहीदां दे पाए हुए पूर्णियां ते सानू सबना नू चलन दा बल सचे पातशाह जी कृपा करके बख्शिश करन खालसा राज भाग दी प्राप्ति होवे पंथ विच एकत्रता एकता इतफाक कलगियां वाले सचे पातशाह बख्शिश करन। सो आउण वाली 7 जून दिन एतवार सवेरे 9:20 ते तिना शहीदां दी याद दे अंदर श्री सहज पाठ साहिब जी दे भोग पाए जाणगे उपरंत सारा दिन दीवान सजणगे। स्वाब संगतां दे चरणां विच बेनती है आप जीआं ने एतवार वाले दिन भी वध चढ़ के पहुंच के हाजरियां भरनियां पहला 6 जून तक आप जीआं ने घरां विच जरूर बर जरूर गुरबाणी दा जाप करना आप अपने बच्चियां नू परिवारां नू उस दास्तान तो जाणू करवाउणा जो कुछ खालसा पंथ दे नाल जो कुछ इस कौम दे नाल वापरिया सो सानू सभनां नू उस तो जाणू होना चाहीदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन सभनां नू समत बख्शिश करन। आओ अगले समय वास्ते बेनती करां भाई बिक्रमजीत सिंह जी गुरदासपुर वाले आप संगतां नू गुरबाणी कीर्तन राही निहाल करनगे होईयां सरबत फुल्लां दी तरस करके खिमा बख्शणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

परम सुगंध पर माखी न रहत राखी, महा दुर्गंध पर बेग चल जात है। जैसे गज मजन के डारत है शार सिर,

0: सारी दुनिया नु मौत डहन जाती है निगार पर सूर में भगत दानी कोलो जांदी हार।
1: दुनिया नु मौत डहन जाती है निगार पर सूर में भगत दानी कोलो जांदी हार।
0: सारी दुनिया नु मौत डहन जाती है निगार पर सूर में भगत दानी कोलो जांदी हार।
1: दुनिया नु मौत डहन जाती है निगार पर सूर में भगत दानी कोलो जांदी हार।
0: मुनसा सूर या हक है ससुर या हक है बचन सच गुरबाणी दा।
1: नाम जगते हमेशा रहिंदा गूंजदा सूर में।

0: हर नाकश दा रूप धार के, हर नाकश दा बैठा रूप धार के, बहुत समझाया नाल सी प्यार के, बहुत समझाया नाल सी प्यार दे,
1: चढ़िया सी नजा सेंटर दी थापी दा, सेंटर दी थापी दा।

प्यार नाल गल्लां समझाउणा चाहुंदे सी, झगड़ा कलेश नहीं पाउणा चाहुंदे सी। प्यार नाल गल्लां समझाउणा चाहुंदे सी, झगड़ा कलेश नहीं पाउणा।

मत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा किता के वड चीरा। रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कहन ना जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद विन सिद्धि किन्ना ना पाईया, कर्म मिला नाही ठाक रहाईया। आखन वाला क्या बेचारा, सिपती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखन औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलिया है दुख,

बिनती चाओ पई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहै हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु, आप हाथ दै मोहे बचावहु। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिखे सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन का वाज संगरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहै प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बार चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिखे हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझै उबरिया, मरण काल का त्रास ने वरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कार बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकन को साव गुण सुख दियो, सतरन को पाल मोह बध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह धार सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निरिबकार निरलंब, आदि अनिल अनाद असंभ। ता का मूड उचारत भेदा, जा को भेव न पावत बेदा। ता काउ कर पाहन अनुमानत, महा मूड कछ भेद न जानत। महादेव काउ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप आपुनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो संकर एकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिखे संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रान काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे।
पुरख जवन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्या है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो, ताके ताप तनक मह हारे हो। रिद सिद्ध घर मोह सब होई, दुष्ट छाह छुवै सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नार नाम ते हारो कहा,

वैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरित शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तोहारो द्वार बाहें गहे की लाज आस

गोबिंद दास तोहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती। मन वजिया वाधाइया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आईया, शब्दों ता गावह हरि केरा, मन जिने वसाया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार उह करे तेरा, कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ सुवामी, सो क्यों मन हो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है, जिस देहे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो, जिस दिया एह वडे आईया, कह नानक सुनहु संत हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे कला, जित घर धारिया, पंच दूत तुद वास कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, अनद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वे सूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सत गुर रहया भार पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावै जे को पुंचै, तिसका हुए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख और धारो। तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा।